शरण पवै सुख तीय, कर अपराध शरण हम आया, गुर हर भेटे परब कमाया, गुर शरण न आईय ब्रह्म न पाईय, भरम भुलाईय जन्म मर आईय, जम दर पादो मरे बेकार, ना हृदय नाम न शब्द आचार। एक पांते पंडित मिसर कहावै, दुबदा राते मैल न पावै, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जन अपार। एक बुरा भला सच एक, बुझ ज्ञानी सतगुर की टेकै, गुरमुख वर्दी एको जानिया, आवण जाना मिट समाणिया, जिन कै हृदय एक अंकार, सर्वगुणी साचा विचार। गुर कै भाणे कर्म कमावै, नानक साचे साच समावै, राम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया सीजै, वर्त तपन कर मन भीजै, राम नाम सारे वरना पूजै, गुर सेव मना हर जन संग कीजै। जम जंदार जोहे नहीं सकै, सरपन डस न सकै, हर का रस पीजै, रहा वाद पड़ै रागी जग पीजै, रैगुण विख्या जन मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चाड़स पवन सिंघासन पीजै, नियोली कर्म खट कर्म करीजै, नियोली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास नीजै, अंतर पंच अगन क्यों धीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीरथ प्रमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, कत पिया दोष का को दीजै, अन न खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, खाहे देही दुख मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सतगुर पूछ संगत जन कीजै, मन हर राचै नहीं जन्म मरीजै, राम नाम बिन क्या कर्म कीजै, ऊंदर दूंदर पास तरीजै, धुरकी सेवा राम रवीजै, नानक नाम मिलै कृपा प्रभ कीजै, राम कली महला पहला, अंतर उच भज अवर न कोई, जो कहिए सो प्राप्त होई, जुगा जुगांतर साहिब सच सोई, उत पत परलो अवर न कोई।

रतन हीरा निर्मोल साचा साहेब अमर अतोल जेहवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन में बैसै डूगर स्थान नाम विसार पचै अभमान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान गुमुख पावै दर गै मान हठ अहंकार करे नी पावै पाठ पढ़े ले लोक सुनावै तीर्थ परमस ब्याद ना जावै नाम बिना कैसे सुख पावै जतन करै बिंद केवै न रहाई मनुआ डोलै नरके पाई जंपर बद हो लह सजाई बिन्ना में ज्यो जल बल जाई इस सद केते मन देवा हठ निगरै न तृप्तावै भेवा शब्द विचार गह गुरसेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म लै पावै सचनाम तुम शरणागत रहो सुभाओ तुम ते बजियो भक्ति भाओ जप जप गुरमुख हर नाउ होम गर्भ जाय मन ना मन भीजै होम गर्भ जाए मन भीने हठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द नहीं करवार नानक गुरमुख तत् विचार राम कली मल्ला पहला ज्यो आया त्यो जावै बौरे ज्यो जन्मे त्यो मरण पया ज्यों रस भोग किए ते ता दुख लागै नाम बसा

खिन में वेश करे नटुआ ज्यो मोह पाप में गलत गया। एतुत माया देख पसारी मोह माया कै मगन पया करे विकार विथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखै साकत मन अभमान पया। जिसका ए तन धन सो फिर लेवै अंत सहसा दुख पया। अंत काल के साथ ना लचालै जो दिसै सब तिसै मैया। आद पुरख परम्पर सो प्राव हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवै किसै सुनावै पैसा ग्रह सराल पया। देख कुटुंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया। जाए तां तने पठाए चाले तने बुलाए लया। जो किश करना सो कर रहा बख्शन हार बख्श लया। जिने चाख्या रावण साइण तिनकी संगत खोज पया। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख समकर जाना हरक सुख ते विरक्त पया। आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया। रामकली दखणी महला पहला जत सत संजम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना। मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी। साचे देख पतीना रहाओ रह गगन पर दृष्ट समैसर। अनद शब्द रंगीना सत बंद कपीन भरपुर लीना। जेवा रंग रसीना मिला गुर साचे जिन रच राचे कित विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका एह सतगुर देख दिखाई। जिनकी ए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई। दीप ते दीपक प्रगासिया त्रिपण ज्योत दिखाई। सच्चा तख्त सच मैली बैठे निर्भव ताड़ी लाई। मोहे गया वैरागी जोगी घट घट किंगरी वाई। नानक सरण प्रभु की छूट है सतगुर सच सखाई। रामकली महला पहला औहठ हस्त मड़ी घर छाया। धरण गगन कल धारी गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ ममता मारो हम सुख है त्रैपण ज्योत मारी। मनसा मार मने मैं राखै सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सत्ता ना हदवाजै घट घट ज्योत मारी। परपंच बेण तही मन राखिया ब्रह्म अगन परजारी। पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत पारी। रब सब सलोकै एतन किंकरी वाजै शब्द निरारी। सेव नगरी मैं आसन औधु अलख आगम पारी। काया नगरी ए मन राजा पंच वसै विचारी। शब्द रवै आसन कर राजा अदल करे गुणकारी। काल बिकाल कहे कह बपरे जीवत मुआ मन मारी। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त आपे करता कारी। काया सोध तरे भव सागर आत्म तत् विचारी। गुर सेवा ते सदा सुख पाए अंतर शब्द रवया गुणकारी। आपे मेल लए गुणदाता हों मैं तृष्णा मारी। त्रै गुण मेटे चौथा वरता एह भगत निरारी। गौरमुख जोग शब्द आत्म चीने हृदय एक मरारी। मनुआ अस्थर शब्द राता एह करणी सारी। वेद बाधना पाखंड औदू गौरमुख शब्द विचारी। गौरमुख जोग कमावै औदू जात सत शब्द विचारी। शब्द मरे मन मारे अवधू जोग जोगत विचारी। माया मोह भवजल है अवधू शब्द तरे कुल तारी। शब्द सूर जुग चारे अवधू बाणी भगत विचारी। एहो मन माया मोहया अवधू निकसे शब्द विचारी। आपे बख्से मेल मिलाए नानक सारण तुम्हारी। यो मन माया मोहे अवधू निकसै शब्द विचारी। आपे बख्से मेल मिलाए ना।

संस्पाओ संस्पूजा संस्पताओ संस्करण सेवा संस्लोक मन प्रणुला संस्पदक विज्ञान विचार संस्पूजा संताता संस्प

अंत मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाए संख पापी पाप असंख कूड़े आर करे संख मलेच मल पाए असंख निंदक।

जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय चढ़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न हुई तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई बलिहारी।

अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालेओ, जिन कीती सो पार पया।

सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना ज्यो तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाहु साहा पत साहिब नानक रह नर जाई।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नान

तिस पाछे बचरे छरेया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करेया सब निदानु दस अष्ट सिदानु ठाकुर कर चल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चा।

सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावहै हर त्यावहै तुद जी। से जन जुग मैं सुखवासी, से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिनका भाओ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन।

मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवां, पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम।

शर्मा जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रच्चा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए

तुम्हें जाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हू जो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझ जू करे।

तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है।

आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाकू भेव न पावत वेदा। ताको कृपान अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भाव। आब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रच्छा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरैन तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह चव सकै न को।

जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माही सुनकै जम कै दूत नाई तिरे छट जाही भौजल बिखम सगाहू गुर सब दी पार पाही जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सह नौ कृपाल संभाले।

आप जी के पावन पवित्र दरबार विच अमृत वेले तो हाजरियां भरदे आं। हुईयां बेअंत बेअंत भुलां दी आप जी ने खिमा कर देनी, अगे तो सावधानता बख्शिश करनी, बाणी शुद्ध अते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारन दी दात प्रदान करनी, अपनी दर घर दी सेवा दे आप योग बना लेना। गरीब नवाज बेअंत संगतां ने आप जी के पावन पवित्र चरणां दियां हाजरियां भरियां, तिल फुल भेटावां माए आप जी के चरणां विच भेटा कीती। कृपा करनी समूह संगत दी हाजरी भेटा दर प्रवान करदे हुए सबना नू दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना। घरां परिवारां विच सुख वरतौणी, बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, गुरसिक्खी दी दात बख्शिश करके नवाजना। बेअंत संगतां वल्लों मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरियां गईयां, सेवावां भेजियां गईयां, गुरम

की साई पीत हिंजी काटिया जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरहो से वाडिया।

मेरा बोलो जी बोलो जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लें ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए। जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावै ताए सब थाई होए साए। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साए। दसां पातशाहियां दी जोत हाजरा हजूर शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी। निमाणिया दे मार मिताणिया दे तान न्यूटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी। आप जी के मुबारक चरणा कमला विच अरदास बेनती महाराज जी। आप जी दे पाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया। सतगुरु जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जी ने खुले दर्शन दीदार दे के निहाल कीता है। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दी सेवा संभाल सोलह साहब जी की बाणी का जाप किया गया। सेवा करदे आ बाणी पढ़दे आ सेवकां पासों बेअंत भुलां हो जांदियां ने बख्श लैणा। सतगुरु जी बेअंत संगतां गुरमुख रूहां आप जी दे चरणां दीआं हाजरियां भर रहीआं ने महाराज जी। सुख वरतायो झोली विच खैर नाम दीआं दातां बख्शिश पा के भेजना। सब दे घरां विच सुख वरतायो रहण आई है सुखमई बतीत होवे। आग्या बख्शिश करो निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान हो। अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना सुख होवे नाम चितावे नानक नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

प्रभ कै सिमरन कब हु न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुन कार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जान जिनको प्रभ माया, नानक तिन जान सरनी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चह कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक की प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महापयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावह सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जिह मार्ग इहो जात अकेला, कह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जापत तै पार पराही। अनेक बिघन जय आए संगार, हर का नाम तत्काल उधार। अनेक जून जनमै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जप हो मन रंग, नानक पाइयै साध कै संग। जेहे मारुग के गने जाए न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जेहे पैंडाए महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तह नाल पशानू। जय महा पयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नोदान। मन तन रंग रति रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत काश नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओत सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है। नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मधे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमय कर राती।

कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्टि मां सुख होए हरस पावे बेला कोए। जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम

सब रहया सत्संग हजूरी, जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे

तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण तब सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो हो कित ठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत तरह, तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अपना सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो का विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभ एका, तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छूटे कौन बंधन बाधे। आपने आप ही चर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत

निरंकार असंख नाव संख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह सिर पार होय अखरी नाम अखरी शाला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाणु अखरा सिर संजोग वखाणु जिने लिखे तिस सिर नाहि जिव फरमाए तिव तिपाहि जीता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर कर देहे पानी धोतै उतरस खेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग कुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर्थ तप दया दत दान जी को पावै तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुत्ती माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाईया पंडती जे हुए लेख पुराण वक्त न पायो कादी आजे लिखण लेख पुराण थित वार न जुगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सुई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुवै नानक जे को आपौ जाने अगै गया न सूहै पाताल पाताल लख आगा सा आगा सूड़ कोड कपाल थके वेद कह निकवात सह सठारै कहन कतिबा असलू इक धात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए समुंद साह सुल्तान गिरह सेटी माल तानू कीड़ी तुलना हो बनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत न करने देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मनमंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब ऊचा था ऊचे उपर ऊचा नाओ जीवड़ ऊंचा हुए कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जीवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए किते मंगह जूद अपार किते गणत नहीं विचार किते खप टुटह वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कित्या दुख भूख सदमार एपे दा तेरी दा तार बंद खलासी भाणे होए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखण पाए ओह जाने जितियां मुह खाए आपे जाने आपे दे आखै से पेके के जिसनु बख्शी शिवसाला नानक पात साही पात साहु अमुल गुण मुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुला वह अमुल लै जाहि अमुल भाई अमुला समाहि अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फुरमान अमुलो मुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करे विख्यान आख बरमे आख इंद आख गोपी तै गोविंद आखै ईसर आखै सिद्ध आखै किते किते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुर नर मुंजन सेव किते आखै आखण पाहि किते कह कह उठ उठ जाहि इते किते होर करे हे ताक न सकै के जीवड़ भावै तेवड़ होए
नानक जाने सच्चा सूई, जीकु आखे भूल बिगाड़, तां लिखिए सिर गावा रंगावार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वै सर्ब संभाली, वाजी नाद अनेक संखा किते वावन हारी, किते राग परिस्यो कहियन किते गावन हारी, गावे तोनू पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारी, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावे इंदें दासन बैठे देवते आदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी, गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारी, गावन पंडित पढ़नर की सर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले,

खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारी सी तुदनु गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चेतनायाव नान क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई है पियो सी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिन तिसदी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहु साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद चोली ध्यान की करहै विभूत किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जगजीत आदेश सह आदेश आद नीलन आदनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चला वह लिखे आ वह भाग आदेश सह आदेश आद नील अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जूत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी भंडारी कलाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जो होवै फुरमान वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता इहो विडान आदेश सह आदेश आद नील अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश इक दूजी भव लख हो हे लख हो वै लख वेश लख लख गेड़ा या की है एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़ियां चढ़िया हुए इकीस सुन

नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपटचन त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेवा दुदार सर्वपालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रिशाल नाम थावना जात जाकर रूप रंग नरेक आद पुरखुदार मूर्त जौन आद शेक देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग जतर ततर दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेक ताम हूं नह जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदै मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिर एक दे भेव न जाने जे भेद और कतेब रूप रंग न जात पास हो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीर चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जा पीजे जाप आदिव अनाद मूर थाप्य सबै जी थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरखा पास सर्विश्व रच्यो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत भूत लख पेश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाभ गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय का माप रूप अमीक अनुष्टतेक पुरकवतूत गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप सूत अंग ही न भंग नात्मेक पुरख पार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पेक सर्व शास्त्र न जान नहीं जे रूप रंग रेक परम वेद पुराण जाकै नित भगत नित कूट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वह चित मद भार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंगन भव प्रकाश निस्तिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजन राज पानन पान देवान देव मा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा भंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम हत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्मु अदृश्य धर्मु सर्व पर नाढ़ अंडन बाटे चाचरी चंत्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे पुजंग प्रया चंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रह न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अतिशय दृश्य कृशय भगवती छंद प्रसाद कथते के आ चिज देश है के आ भिज भेष है के आ गंज कर्म है के आ भंज भरम है के आ भिज लोक है के आ दित सुख है के अवतूत वर्ण है के बेभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ सुख वर्ण है के सर्वा अपर्ण
कि जत के जगतं कृति है, कि छत्रं छत्री है, कि वर्मं स्वरूप है, कि अनुभव अनूप है, कि आद अधिव है, कि आप अपिव है, कि चित्रं बहिन है, कि के अधीन है, कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह, कि पाक व्यय वह कि गय भुल गय वह कि फूल गुनाह है, कि साहन साह के कारण कुनिंद है, कि रोजी देहांत है, कि राज करीम है, कि कर्मं करीम है, कि सर्वं कली है, कि सर्वं दली है, कि सर्वत्र मान्य है, कि सर्वत्र दान्य है, कि सर्वत्र गौण है, कि सर्वत्र पौण है, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र राज्य है, कि सर्वत्र साज्य है, कि सर्वत्र दीन है, कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाहु, कि सर्वत्र पाहु, कि सर्वत्र देश है, कि सर्वत्र पेश है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज्य है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र दिश है, के सर्वत्र पिश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप्य है, के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलिम है, के परमं फहीम है, के आकल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसनल वजू है, तुमामुल रजू है, हमेशल सलाम है, सली खत्मदाम है, गनीबुल शिकस्त है, गरीबुल परस्त है, बिलंदुल मकान है, जमीनुल जमान है, तमीजुल तमाम मै रुजुअल निदान है, हरि फुल अजीम मै रजायक यकीन है, अनेकुल तरंग है, अभेद है, अपंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है, सुदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैव अकाम है, निर्वाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, वो अंगाद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है, अचिज है, अचूत है, कि नरकं प्रणास है, पृथ्वल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुक्त अनूप है, चाचरी चंद अपंग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अवय है, अपूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, बंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलिख है, अदिख है, अलिख है, अपेक है, अटा है, अगा है, असंभ है, अगम है, अनिल है, अनाद है, अनित्य है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट चंद्व प्रसाद सर्वंगहंता, सर्वंगंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल चंद्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न शत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती छंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चिराग है, के कामल करीम है, के राजक रहीम है, के रुजी देहांद है, के राजक रहिंद है, करी मुल्क माल है, के हुसनल जमाल है, गनी मुल्क राज है, गरीबुल निवाज है, हरिबुल शिकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकं प्रनास है, समस्तुल निवास है, गंजुल गनी महरजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं प्रनास है, बहस्तुल निवास है, के सर्वुल गवन है, हमीसुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमीश है, समस्तुल अदीश है, आदेशुल आलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, कर्मुल कमाल है, के जरूरत जुमाल है,
कि अचलंग प्रकाश है, कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि मितो विभूत है, कि मितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपंग है, मत पार चंत्व प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुन गण मुदाम, अरबर अगंज हर नर प्रपंजु, अनगुन प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुभवनाथ मुन मन प्रकाश, गुन गण प्रणाम जल थल मुदाम, अंचेज अंग आसन भंग उपमा पार, गत मित उदार जल थल अमंड, दिस विस अपंड जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभवनाश त्रितर तुरास, आजान बाहु एक सदाहु, ओ अंकाराद कथनी अनाद, खलखंड के आल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अनछिज गात आजिज न बात, अनचंज गात अन रंज बात, अनटुट भंडार अनडट अपारा, डीठ धर्म अत ठीठ कर्म, अनब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना चंत्व प्रसाद, करुणा लें

कहते हैं निर्णायक हैं, कलकायक हैं, स्वंपर हैं, कुरनालय हैं, निर्पनायक हैं, सर्पायक हैं, पपंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत्य सर्वाकृत्य कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म भस है, जस के जस है, पुजांग प्याचंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम अगाहटा नाथि प्रमाथि अजूनी अमुनि नरागि नरंगे नरूपे नरिखे अकर्मंग परमंग गंजे अलिखे पुजंग प्रया छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते।

कोट स्नान गजा दिख दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पतंत फसे जम्फास परेंगे। जे नर श्रीपत की प्रसह पग ते नर फेर न देह करेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बख ध्यान लगायो। नाथ प्रियोली सा समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो। साच कहूं सुन लेहु सबह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पान पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा को शीश निवायो। को बतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन ताय।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर भगवंत सगल सामग्री तुम्हारे।

नाव सुन मन रहसिया तो पाए मोख द्वार सच तो पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया सा।

ओड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तासा इनकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जसना हुक्म मनाए सी हुक्म मनया हो वह प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदया सो फल पाए सी।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण ना जाई। तोती टिक्का तै जप माली धान मलेचा खाई। अंतर पूजा पढ़े कते बा संजम तुरका पाई। छोड़ी ले पाखंडा नाम लया जाहे तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवाज श्री भगाए तिन गल ताग तिन घर ब्राह्मण पूरा।

सुत क्यों कर रखिया सुत पवै रसोय नानक सुतरे सुत केव न उतरे ज्ञान उतारे तुहे महला।

साहिब जी एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख ध्याए बरदाता संत सहार सदा विख्याता तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गाव हे गंभीर ती मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गाव हे इंद्राद भगत प्रहलाद आत्म रस जिन जानियो कब कल सो जस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी सरनागत पया अजान वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जिसका तन मन धन

अलंकार मिल थैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निःचल घर बांधियो गुर कियो बंधानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक

0: संत साजन भय सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: तुम मात पिता हम बारक तेरे

जिन हर धार्यो हर उर्छे। हम टिंडे टीम बहुत अब अत पारी, हम टिंडे टीम बहुत अत पारी।

मन खिन खिन भरम भरम बहुतावै तिल घर नहीं वासा पाईऐ गुर अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आण वसाईऐ गोबिंद जियो सत संगत मेल हर ध्याईऐ हौ मैं रोग गया सुख पाया हर सहज

मिल साधु हर गुण गाइयै बसंत हिंडोल महला चौथा आवण जान भया दुख बिखिया आवण जान भया दुख बिखिया देह मनमुख सुन्नी सुन्य राम नाम खिन पल

जय गोबिंद भगत सो धन देश, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ का ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लग

संताप खसम त्याई एक मन एक पाए गुर पूरे की सदा सरनाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहो अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूर।

चढ़े जोगी हिता नाम पल पाई। एत किंगुरे ध्यान न लग लागै जोगी ना सच पल पाए। एत किंग

जोगी देहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवे ता तंती वाजे इन मृद तृष्णा खंडी हुकम बुझे सो जोगी कहिए एक सुस्योल।

विण बजाए किंगुरी बजाए जोगी सा किंगुरी बजाए कह नानक मुक्त हो वह जोगी साचे रहसमाए। राम कली महला के जा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख देह वड्याई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिस दे उपजै तिस ते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा दूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सदा शब्द रवै घट अंतर सच्चे स्यों लिवलाई सत संगत मैं नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई परम न भूलो सतगुर सेवो मन राखो एक ठाई बिन ना वैसा भूली फिर दी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडै पाखंड जोग न पाई शिव नगरी मैं आसन बैसे शिव नगरी मैं आसन बैसे गुर शब्दी जोग पाई धातुर बाजी शब्द निवारे नाम बसै मन आई इहो शरीर सरवर है संतो इस नानक रेल बलाई इह शरीर सरवर है संतो इस नान करे लिवलाई नाम स्नान कर है से जन निर्म

विष्णु महेश त्रय मूर्त त्रैगुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिकटि छूटै चौथा पद लिबलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद बखाण तिन्ना बूझ न पाई बिख्या माते परम पुलाए उपदेश कह कहै किस पाई भगत जना को उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागै सो गत पाए सब

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेत अदिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निर्मोल निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हौ गुरसला ही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक कह बेनंती ना भव

संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई राव। हार बिन सब किच मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सो पूजा होवे पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाई, शब्द मराए मन निर्मल संतो एहा पू एहा एह पूजा थाए पाई। पतत पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई, बिरनावै होर पूज न होवी परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूजा आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई।

जाने ते सब सुख पावे संतोन ते नाम सिखाई। आपना आपना पछाण संतो कूड़ कर है वड्याई। पाखंड की जय जम नहीं छोड़े ले जासी पत गुवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाण गत मित नहीं पाई। ए मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई। सुन सुन गुरमुख नाम बखाण सत संगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गुआवै दर साचै सो बापाई। साची बाणी सच बखाणै सच नाम लिवलाई। पै पंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रव्यंत सिखाई। साब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वढ्याई। राम कली महला तीजा हम

कराए करता आपे बख्श भंडारी, तिस क्या गुण का अंत न पाया, तिस क्या गुणा का अंत न पाया, हो गावा शब्द विचारी, हर जियो जपी हर जियो सलाही, विचो आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया, अखुट सचे भंडारी, अपने भगतां नूं आपे तुठाए अपनी कृपा कल धारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किछ है तिसका, आखण बिखम विचारी, शब्द लगे सही जन निस्तरे, पौजल पार उतारी, बिन हर साचे को पार न पावे, बूझै को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सवारी, काया कंचन शब्दे राती, साचा नाए प्यारी, काया अमृत नहीं पर पूरा पाये शब्द विचारी, जो प्रभ खोजी जो प्रभ खोजे ऐसे ही पावे, होर फूट मुए हंकारी, बाद बादी बिनसा सेवक सेवा गुर कह हित प्यारी, सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, होमै तृष्णा मारी, सतगुर दाता तिन पिछाता, जिसनों कृपा तुम्हारी, सतगुर न सेवै माया लागे, डूब मुए हंकारी, जिचर अंदर सास पिचर सेवा की चै, जय मिलिया राम मुरारी, आन दिन जागत रहे दिन राती, अपने प्रिय प्रीत प्यारी, तन मन वारी वार कुमाई, अपने गुर विटो बलिहारी, माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी, आप जगाए से ही जागे, गुर कै शब्द विचारी, नानक से ही मुए जे नाम न चेतै, भगत जीवे विचारी, राम कली महला तीजा, नाम खजाना गुरते पाया, तृप्त रहे आगाई, संतो गुरमुख मुक्त गत पाई, एक नाम वस्या घट अंतर, पूरे की वड्याई रहाओ, आपे करता आपे भुगता, देंदा रिजक सबाई, जो किछ करना सो कर रहा, अवर न करना जाई, आपे साजे सिष्टो पाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसा सरे बहुता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई, अपना आप उपाए, अलख न लखना जाई, आपे मार जिवाले, आपे तिसनों तिल न तमाई, एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनिए को जाता, सचे रहे समाई, आप स्वरूप सियाणा आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई, इक ना नावो आप पुलाई, इक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सलाहो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर न कोई राजा, कर तपावस बणत बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा, विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो, जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रव्या सब थाई, राम कली महला पंजवां, अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, किन्हीं किया पर विर्थ पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किन्हीं निवल पोए अंगम सादे, मोहे दीन हर हर आराधे,

कोई कहतो अनन पगौती मोहे दीन हर हर ओट लीती। किन्ही कहया हो तीर्थवासी कोई अनंत जी भया उदासी किन्ही पवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर।

किन्हे तंत मंत बौखेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कुहावे पंडित को खट कर्म सहत स्यो मंडित। कोई करे आचार सुकरणी मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन ना वह मन न प्रबोधे। कौ नानक जो साध संग पाया बूझे तृष्णा महा शीतलाया। राम कली महला पंजवा इस पानी ते जन तू करिया। माटी काला का ले देहो देहोरा करिया माटी काले देहोरा करिया। उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ में जिन तू रखिया। राखन हार समार जना सगले छोड़ विचार मना रहा। जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रा जिन दिए

जाका नाम सिमरत भौ जाए, तैसे संत जना राख हर राय। ऐसे राखन हार दयाल, जत का देखो तुम प्रतपाल रहाओ। जल पीवत जो तिखा मिटंत, तन भिक्षा गृह आवत कंत। लोभी का तन प्राण आधार, त्योहार जस हर हर नाम प्यार। किरसानी जो राख रखवाला, मात पिता दया जो बाला। प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्योहार जन राख।

सगल योहा हर कै नाम सगल उदार। ज्यों पावक संग सीत ज्यो पावक संग सीत को नासो, ऐसे प्राचत संत संग विनाश। ज्यो साबुन का पुरको ज्यो साबुन का पर उजल होत, नाम जपत सब ब्रह्म पौखोत। ज्यो चकवी सूरज की आस ज्यो चात्रिक बूंद की प्यास। ज्यों कुरंक नाद कर्ण समाने त्योहर नाम हर जन।

प्रभ सगल तुम्हारी तारना, ये मन हर का नाम उदाहरणा रहाओ। खिन में थापो थापे कुदरत सब करते के कारना, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारना। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना, भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इया उहा न हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना, तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक अनेक बार कोट जाने ऊपर

दर्शन भेटत पाप सब ना सहे हरस्यो दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सिखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुख लाई पतत पुनीत किए खिन पीतर ज्ञान अंधेर मंगाई करण कारण समरत स्वामी नानक ते शरण आई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई आंध कूप भिखिया ते काट्यो साच शब्द बन आई जन्म मरण का सहसा चूका बाहौड़ कथाओ न ताई नाम रसायन हो मन राता अमृत प्रीत पताई संत संग मिल कीर्तन गाया नेह चल वस्या जाई पूरा गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निदान पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियाणप उकत न मेरी पूरा गुरु कमाई जपत जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलतर मह

आप संभाले, आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांधया, पव जल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई, अकाल मूर्त अजूनी संभव, काल अंधकार दीपाई। अंतर जामी जीवन का दाता, देखत तृप्त अघाई, एक अंकार निरंजन निरपव, जल थल रहया समाई। भगत दान भगत भगता को दीना, हर नानक जाचे माई। रामकली महला पंजवां श्लोक, सिखो शब्द प्यारे ओ।

हर प्रेम भगत बने आई संतो सतगुर खेप निभाई संतो हर नाम लाहा दास को दिया सगली त्रिसन उलाही संतो रहाओ खोजत खोजत लालिक पाया हर की मीत हर कीमत कहन न जाई संतो चरण कमल स्यो लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो।

आत्म राम रविया सब अंतर कातया वह कत जाई संतो आद जुगा दी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहा सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक का हर नानक बा

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो तंगा बहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है घर ता तेरा है सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा है सचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच तो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह नमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुदवाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया इस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टूटा जिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै तां सो जन दे जिसनो होर क्या कर है बेचारिया एक परम भूलै एक परम भूले फिर दय दिस एक नाम शब्द एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावै आवो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौ गुर को हुक्म मन्या पाईऐ हुक्म मन्या गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी ए मन चंचला चुतराई किने न पाया चुतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान की तास सविटो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले विकटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले सा तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मुले ना कीचै जिते अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किना तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने आख है ता वेख सब तू है जिन जग तो पाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नी सचा मन वसाया जी जंत सब तो दो पाए कबीर पर सुन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
कहे नानक जिसनु आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां हकेरी बिख मार्ग चलना लब लोभ अहंकार सच तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालों निकी इत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप सजया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुग जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिव चलाहे स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जेव तू चलाए तिलवाए चलाए जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए है से हर हर सदा ते आवे जिसनु कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावे तिवै चलावे एह सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एह तिन कह मन वस्या जिन तुरो लिखिया आया एक फिर कनेरे करै गल्लां गल्ली किने न पाया कह नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यो पवित संगत सबाइया कहिंदे पवित सुन दे पवित जिनी से कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजाय बिन सहजे सहसा न जाए सहसा किता संयम रहे कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन तो बहु शब्द लागो हर सिर हो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाय एह सहसा इव जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिन जिन तिनी जन्म जू है हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जू वह हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता निर्मल सतगुर से करनी कमाणी कूड़ की सो पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया भले से बनजारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मा संभाले आप छड सदा रहे परनाए गुर बिन।

जागदाता सोए भगत वछल तेह लोए जियो गुरशब्द समावे गुरशब्द समावे अवर न जाने कोई जियो अवरो न जान है शब्द गुर कै एक नाम ते आवै प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर टालिया तोर ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुरजा गुर जावै हर प्रभ पास जियो सात गुर कर है हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जनै केरी हर हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सत गुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कहै साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावै आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावै तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाना फिर नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सत गुर पाणा अपना बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल न पाया मित पैज मित बिकसै जिस मित की पैज पावै तुसी विचार देखो पुत भाई हर सत गुर पैनावै सत गुरु परतख हुंदै बह राज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंत सतगुर बोलिया मैं पिछे कर कीर्तन करियो और निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावै पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावै हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लै रजाए जियो मोरी

0: प्रकट सोया
1: अंत अमृत प्रयागुड़ नाल होवंदा होवंदा लहन स्कंदास ओन जाने मुड़ा माया मदमाता होछी बात मिलन ना जाई परम में परम तड़ा कह नानक गुर बिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंद मेरे गोविंद गोविंदा प्राण अधारा मेरे गोविंदा कृपाल मेरे कृपाला दान दातारा मेरे कृपाला दान दातार अपर अपार कट कट अंतर सुहनिया इक दासी तारी सबल पसारी जी जंत ले मोहनिया जिस नोरा खैसो सच पाखे गुर का शब्द विचारा कहो नानक जो प्रभ को पाणा

अंत मूर्ख अंध घोर अंत चोर राम असंत अमर कर जाए अशांत गल वह संत पापी पाप अशांत मूड़े आर मरे फुराए संत मलेच मल पाए असंत निंदक करे पाप नानक नहीं कह क्या मारे न जावा देख जो तुम पावे सही सही कर सदा सदा मत संत नाम संत नाम गम गम संत दो असंत कहें सिर्फ

खाला ही खाला है नदियां से बाहर समुद्र साथ अंत न सुखी कहना अंत न करना देखना अंत न देखना सुनना।